अध्यात्म ज्योति 104.8 सिल्वर पैलेस विश्वसनीय सुरक्षित र भर पर्दो स्वदेशी श्रम र सिपबाट निर्मित आकर्षक डिजाइन का मिसावट रहित चाँदी का एक्सक्लुसिव गहना लगायत भाँडाहरू विवाह लगायत अन्य अवसर का लागि चाहिने चाँदी का सामानहरू को लागि सिल्वर पैलेस न त ठगिने डर न मिसावट को चिंता हरेक सामान मा 100% शुद्धता को ग्यारेन्टी दिने एकमात्र सिल्वर पैलेस पसल नंबर 15 विशाल बजार न्यू रोड एवं प्युखा न्यू रोड होलसेल तथा रिटेल सेवा

कार्यक्रम भजन दीपांजलि प्रत्येक सोमबार सुमधुर भजन का साथ में बिहान 8 बजे देखि 9 बजे सम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। यस कार्यक्रम का प्रायोजक उच्च स्तरीय प्रविधि द्वारा स्वदेशमै निर्मित चाँदी का हर एक प्रकार का सामग्री का लागि प्रसिद्ध सिल्वर स्टेज धर्मपथ न्यू रोड काठमाडौँ। कार्यक्रम भजनांजलि प्रत्येक मंगलवार बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म अवश्य सुन्नुहोला केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। प्रत्येक मंगलवार बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म सर्व मांगलिक कामना का साथ में कार्यक्रम सर्व मंगलम सुन्न सक्नुहुनेछ केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभावर 98 41 28 98 20 मोबाइल नंबर 98 41 28 98 20 में संपर्क कर सकूने।

जो स्ट्रिंग्स आएंगे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, तो एक बार देख लें जगह। और साइंस से फिर रवि जी सभी रिदम एक साथ आएंगे, धिन्ना धिन दा गिता गिता गिता। बोलो भाई रेडी, एक करते पंडित जी।

0: गोल्ड पैलेस, सुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू। फोन नंबर 42 43 736।
1: रेडी मीडिया शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए,
2: मलाई फ्रॉक,
3: मलाई पनी सूट,
4: अनि मलाई

0: சாவேல் சுச்சேபாடி.
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सक्नुहुनेछ.
2: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो.
3: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ.
2: त्यसैले शुद्धता नै खोजौँ. जेजे ज्वेलर्स प्रस्तुत छ. जेजे ज्वेलर्स. जेजे ज्वेलर्समा छ सुन, चाँदी तथा हिराका आकर्षक डिजाइनहरूको उत्कृष्ट कलेक्सन. सुन, चाँदी तथा हिरा जे किन्नुहोस् जेजे ज्वेलर्सकै किन्नुहोस्.
4: जेजे ज्वेलर्स, बसन्तपुर, न्यू रोड, दमकल नजिक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क, मुनि.
5: सम्पर्क नम्बर 5320411 9802076888.
2: जे जे ज्वेलर्स, शुद्धताको पहिचान.
6: FM AJ

राधा बड़ा कन्हैया पकड़ी राधा की पैया अरे राधा जी का नरम कर जवाना थे ताता थैया। एक तरफ गवालन गैया एक तरफ ढीठ कन्हैया अखियों से अखियां टकराई तो बहन लगी पुर

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: One oh four eight.

0: मुझे कुछ कहना है,
1: मुझे भी कुछ कहना है,
0: मुझे कुछ कहना है,
1: मुझे भी कुछ कहना है।
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम।
1: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
0: अच्छा मैं कहती हूँ

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँ भरि।
1: One 104.8.

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: Oh,

0: गोल्ड पैलेस सुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: मलाई ट्रैक सूट चाहियो,
2: मलाई फ्रॉक,
3: मलाई पनि सूट,
4: अनि मलाई

0: Rasavel Chuchepati.
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सकूने।

0: गोल्ड पैलेस सुप्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सकूने।

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सकूने।

0: एड्रेस सुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू, फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

0: गोल्ड पैलेस सुक्रपत न्यू रोड काठमांडू। फोन नंबर 42 43 736।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 मा संपर्क कर सकूने।
2: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो,
3: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
2: त्यसैले शुद्धता नै खोजौँ। जेजे ज्वेलर्स प्रस्तुत छ जेजे ज्वेलर्स। जेजे ज्वेलर्समा छ सुन चाँदी तथा हिराका आकर्षक डिजाइनहरूको उत्कृष्ट कलेक्सन। सुन चाँदी तथा हिरा जे किन्नुहोस् जेजे ज्वेलर्सकै किन्नुहोस्।
4: जेजे ज्वेलर्स बसन्तपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैङ्क मुनि। सम्पर्क नम्बर 5320711 98020 76888।
2: जे जे ज्वेलर्स शुद्धता को पहचान।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँ भयो।
1: FM AJ 104.8 MHz.

अरे भाई जल्दी चलो, बस निकल जाएगी। अरे भाई क्या हुआ, बस निकल जाए। New program.

0: ओल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 मा संपर्क करना सक्नुहुने छ।
2: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो।
3: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
2: त्यसैले शुद्धता नै खोजौं। जेजे ज्वेलर्स प्रस्तुत छ। जेजे ज्वेलर्समा छ सुन, चाँदी तथा हीरा का आकर्षक डिजाइनहरूको उत्कृष्ट कलेक्शन। सुन, चाँदी तथा हीरा जे किन्नुहोस् जेजे ज्वेलर्सकै किन्नुहोस्।
4: जेजे ज्वेलर्स बसन्तपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक मुनि। सम्पर्क नम्बर 5320411 98020 76888।
2: जेजे ज्वेलर्स शुद्धताको पहिचान।

0: गोल्ड पैलेस सुप्रपथ न्यू रोड काठमांडू। फोन नंबर 42 43 736।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ।

6 बजे। अब FM अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज को संध्याकालीन प्रसारण प्रारंभ हुन्छ। FM अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ संध्याकालीन सेवामा शुभ संध्या।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.5।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई भयो सधैँ भयो।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति, शांति रेडियो।

0: पहले यहाँ सुंदर यूनुंता एफएम और ठहरतम ज्योति।
1: अध्यात्म ज्योति।

0: जय शिव शंकर।
1: कथावाचक रुद्रगिरि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाते हैं। दूषण राक्षस घोर तपस्या करके ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करता है कि कोई देवता दानव या मानव उसका वध नहीं कर पाएगा, परंतु शिव भक्तों को सताने पर वो समाप्त हो जाएगा। वर प्राप्ति के पश्चात दूषण अपने भाई पूषण से प्रतिशोध लेने के लिए उसकी राजसभा में पहुंचता है। दोनों शक्तिशाली राक्षस भ्राता द्वंद्व युद्ध करते हैं। पूषण को समाप्त करके दूषण स्वयं राक्षसों का अधिपति बन जाता है। उधर उज्जैनी नगरी में वेद प्रिय ब्राह्मण अपने चार शिव भक्त पुत्रों सहित शिव आराधना करता है। गोप बालक श्रीकर जब उन्हें शिव भक्ति करते देखता है तो उसके हृदय में भी शिव भक्ति का उदय होता है। एक बड़े पाषाण खंड में उसे शिवलिंग के दर्शन होते हैं तथा वो शिव की आराधना में खो जाता है। परंतु श्रीकर की माता गोपा अपने पुत्र की शिव भक्ति पर प्रसन्न न थी। वो श्रीकर को शिव भक्ति से विरत करने के लिए शिवलिंग रूपी पाषाण को जल में फेंक देना चाहती है, परंतु उसे हिला भी नहीं पाती। श्रीकर अपनी माता की बाधा से बचने के लिए उसी पाषाण को फूल के समान उठाकर एकांत स्थान में ले जाता है। श्रीकर की माता उसे ढूंढती रहती है।

इस निखट्टू का कहीं अता पता नहीं है। घर का काम काज कौन करेगा, गाय कौन चराएगा, क्या इसके शिव बाबा

0: सीकर बेटा, तू कहाँ गया था? तेरी माँ झूठ मूठ तुझ पर चिढ़ रही थी और धरती आकाश एक करते हुए तुझे ढूंढने गई है।
1: माँ तो बावली है बाबा, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं कि डगर भूल जाऊंगा।
0: हाँ हाँ बेटा, तू शिव जी की भक्ति में लगा है ना, और तेरी माँ समझती है कि तू घर का काम काज ही भूल गया है।
1: काम काज अपनी जगह है बाबा, और पूजा पाठ अपनी जगह।
0: अरे वाह बेटा, अरे वाह मेरा बेटा, वाह वाह।
2: ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।

0: अच्छा, तो यहाँ आकर बच्चों को भी ओम नमो शिवाय सिखा दिया।
1: ओम नमः शिवाय।
0: श्रीकार, बहुत हो गया है, अब मेरा धीरज टूट चुका है। मैं कहती हूँ घर चल, चल उठ। दुष्ट कहीं का उठता है कि नहीं, चल घर चल। मैं कहती हूँ घर चल।
1: ओम नमः शिवाय।
0: जो मैं कहती हूँ करता है कि नहीं।
1: ओम नमः शिवाय।
0: श्रीकर घर चल, नहीं तो मैं तेरी सारी भक्ति झाड़ के रख दूंगी। हाँ,
1: ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
0: ये ले, हर पेट से शिवाय। ले और ले, और ले, ले।
2: क्या हुआ बेटा?
3: कुछ नहीं बापू, सीटियां काट रही थी।
2: अच्छा अच्छा। बेटे सीकर, मैं घास काटने जा रहा हूँ, और देखो तुम कुछ खा कर गाय चराने जाना। अरे तुम्हारी माँ की तो मत मारी गई है, पता नहीं कहाँ भटक गई है। नारायण नारायण नारायण।
0: ये ले, ये ले।
4: गोपा, मामली हो गई है क्या? लड़के को मार डालेगी?
0: हाँ हाँ, आज मैं इसे मार ही डालूंगी। इस पर भक्ति का भूत सवार हो गया है। जब से इसने उन ब्राह्मणों को पूजा करते देखा है, तब से शिवा शिवा की रट लगाए हुए है।
1: ओम नमः शिवाय।
0: छोड़ दे।
4: तो तेरा बेटा तन मन से शिव शंकर की भक्ति में लगा हुआ है।
0: छोड़ दे मुझे। जानी दे।
5: नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
6: हर हर महादेव।
7: प्रणाम देवर्षि।
6: आयुष्मान भव। भोलेनाथ अपने आसन पर नहीं है, कहां लुप्त हो गया ज्ञात है?
7: हम स्वयं चकित थे देवर्षि, देखते ही देखते न जाने प्रभु कहां अदृश्य हो गए।
6: भोलेनाथ का अदृश्य होना रहस्य में लगता है। आप लोग चिंता ना करें, मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूं। नारायण नारायण।
4: अरे गोपा बहन, क्या हुआ, चिरीकर मिला?
0: अरे बहन, ऐसे पूत से तो निपुती भली, भगवान जाने कौन से जन्म का पाप मुझे लगा है।
2: किसको कोस रही है गोपा?
0: अपने भाग्य को और तुम्हारे बेटे को।
2: अरे मेरे बेटे को क्या हुआ?
0: अरे जाकर देखो, उसे पत्थर के साथ चिपक कर बैठा हुआ ओम नमो शिवाय की रट लगाए हुए है। इतना मारा मैंने उसे, फिर भी घर आने का नाम नहीं लिया उसने।
2: अरे तेरी मत मारी गई है गोपा, मेरा सीकर बेचारा देख घर का सारा काम काज करके गाय चराने गया है।
0: बेटा तो बेटा, बाप की भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है।
2: ओहो, तेरा माथा फिर गया है गोपा, सीकर अभी दूर नहीं गया होगा। चल तुझे दिखाता हूँ, चल चल चल चल। देख वो सीकर है ना,

0: क्या है माँ?
1: तू मेरा बेटा शिखर है ना?
0: हाँ माँ।
1: तो फिर वहाँ कौन था?
0: वहाँ? हाँ। वहाँ भी मैं था, यहाँ भी मैं हूँ।
1: मैंने तुझे इतना मारा बेटा, और फिर भी तू गाय चराने आ गया मेरे लाल।
0: धर्म का पालन तो करना ही पड़ता है ना माँ।
1: हे भगवान, मैं बहुत पापन हूँ जो अपने बेटे को इतना मारा पीटा।
0: पछताना माँ, माता की मार तो ममता का प्रसाद होता है।
1: बेटा, अब तो तुझे शिव पूजन की धुन नहीं लगेगी ना?
0: शिव पूजा की धुन घुन की तरह लग गई है माँ, पर तू चिंता ना कर, मैं पूजा भी करूंगा, तेरा काम भी करूंगा।
1: चुग चुग जियो मेरे लाल, चुग चुग जियो, चुग चुग जियो।

0: आप समझ में आई बात? भगवान भक्त का काम कर रहे हैं। नारायण नारायण, और भक्त भगवान की पूजा कर रहा है।
1: ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
0: भगवान भक्त की गैया चरा रहे हैं। धन्य हो लीलाधारी, धन्य हो, धन्य हो।

0: 我那个不要人印。
1: किसकी आज्ञा से पूजा कर रहे हो?
2: ओम नमः शिवाय। पूजा अपने मन की प्रेरणा से होती है, इसके लिए किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं है।
3: तुम राजद्रोह कर रहे हो, यह असुर राज दूषण का राज है, यहाँ केवल उन्हीं की पूजा हो सकती है।
2: ओम नमः शिवाय। हम राक्षसों की पूजा नहीं करेंगे, इसके लिए चाहे हमारे प्राण ही क्यों न चले जाएं। ओम नमः शिवाय।
0: पूजा की सामग्री तोड़ दो, इस शिवलिंग को।
4: तुम लोग क्या ऊंचा सुनते हो?
5: नमः शिवाय।
0: ये मंत्र जपने की राजा आज्ञा नहीं है।
5: नमः शिवाय।
0: बोलो भगवान तुष्णाय नमः।
4: भगवान तुष्णाय नमः, ये कौन से नए भगवान हो गए?
0: कालजयी राक्षस राज भगवान दूषण।
4: दूषण, जिसका नाम ही दोष से भरा हो, उसकी पूजा कौन करेगा? जाओ अपने दुष्यंत भगवान को कहीं और ले जाओ।
0: ये पत्थर तेरा भगवान है, एक दो इस पत्थर को नदी में।
4: उठाओ उठाओ उठाओ, अपने दुष्यंत भगवान का नाम लेकर उठाओ।
0: उठाओ पत्थर को। मैं तेरे इस पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा।
6: हम इस स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान को चले जाएं।
2: ये हमारी समस्या का समाधान नहीं है।
0: पुजारी जी,
4: पुजारी जी,
0: पुजारी जी, पुजारी जी।
2: कहो गोपाल, क्या हुआ?
0: चमत्कार हो गया महाराज, चमत्कार हो गया।
2: क्या चमत्कार हो गया, ये तो बताओ।
0: महाराज, राक्षस दूषण के सैनिक गोपा ग्वालिन के बेटे श्रीकर को मारने गए।
7: वहाँ चमत्कार हुआ महाराज,
0: शिव जी के पत्थर से आग निकली और सबको जलाने लगी।
2: क्या?
0: पूछिए मत महाराज, कोई भागा, कोई चीखा, कोई चिल्लाया, वो ऐसे भागे कि मुड़कर पीछे देखा ही नहीं।
2: ओ नमः शिवाय, गोपा ग्वालन का बेटा श्रीकर। धन्य हो श्रीकर, धन्य हो। चलो हम भी वहीं जाएंगे, उससे सुरक्षित स्थान हमारे लिए कोई नहीं।
8: हर हर महादेव।
3: राक्षस राज महाराज दूषण की।
9: कौन है ये लोग, क्या अपराध है इनका?
10: महाराज, ये आपको सर्वशक्तिमान ना मानकर अपनी इच्छित पूजा पाठ कर रहे थे। हम इनकी पूजा पाठ विध्वंस करके आपके पास बंदी बनाकर लाए हैं।
11: ये सब राजद्रोही है महाराज,
9: डाल लो इनको कारागार में।
10: राज्य भर में चारों ओर केवल आप ही की पूजा हो रही है।
11: महाराज, आपको सर्वशक्तिमान मानकर लोग आपकी जय जयकार कर रहे हैं।
0: नहीं महाराज, नहीं, ये सत्य नहीं है।
9: क्या कहा, ये सत्य नहीं है? तो सत्य क्या है
0: महाराज?
1: हम उज्जैनी के एक गोपालक और उसके साथियों की भक्ति को नहीं रोक सके।
12: चुप रहो कायरो, तुम सब एक बालक की भक्ति को नहीं रोक सके। ये दशा तुम्हारी किसने की है? कौन है वो?
13: महाराज, हमें पता चला कि उज्जैन के गोप आपको शक्तिमान नहीं मानते, वो आपकी पूजा न करके अपनी पूजा में मगन रहते। हम उन्हें रोकने गए तो हमारी ये दुर्दशा हो गई।
1: महाराज, हम उनकी पूजा को नष्ट भ्रष्ट करने लगे तो चमत्कार हुआ, वहाँ की लपटें निकली।
12: क्या कहा? आग की लपटें?
13: हाँ महाराज, उन आग की लपटों ने हमारा पीछा किया और हमें जलाने लगी और हमारी दशा हो गई।
1: इसी प्रकार हम जीवित बचकर यहाँ आए हैं महाराज।
12: कौन है वो गोप बालक जिसने तुम सब की ये दशा की? आप वो दूषण के हाथों जीवित नहीं बचेगा। उस गोप बालक की मृत्यु हमारे हाथों होगी, हम उससे कोई जीवित नहीं बच पाएगा।

0: शिवाय ओम नमः शिवाय।
1: अच्छा शिवाय, तो तू है वो मायावी बालक शिवाय जिसने अपनी माया से मेरे सैनिकों को जलाकर यहां से भगाया है। तुझे इस काल विजेता दूसरा की शक्ति का पता नहीं, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा।
0: ओम नमः
2: सावधान दुष्ट दूषण, सावधान
0: शिवाय।
2: अपने आप को काल विजेता समझने वाले मूर्ख, तुझे ज्ञात नहीं कि तूने कितनी बड़ी भूल की है।

0: भगवान शिव शंकर आप मुझे नहीं मार सकते, मुझे ब्रह्मदेव का वरदान है, मुझे कोई नहीं मार सकता। आप मुझे क्या मारेंगे, मुझे काल भी नहीं मार सकता।
1: तुझे काल नहीं मार सकता, किंतु मैं तेरे लिए महाकाल हूं, महाकाल।
0: Ha ha ha ha!

0: काल भगवान भोलेनाथ की
1: जय।
0: भोलेनाथ की
1: जय।
0: प्रभु
2: वेद प्रिय, तुम्हारी अटूट भक्ति शिव भक्तों के लिए सदा आदर्श बनी रहेगी। मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो।
0: प्रभु प्रभु, मैं धन्य हुआ प्रभु, जन जन्मांतर तक आपकी भक्ति मेरे हृदय में बनी रहे प्रभु, बस।
2: तथास्तु।

बालक शिखर, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, आंखें खोलो। आंखें खोलो शिखर।

0: गोप चाहती में तुम्हारा नाम सदैव अग्रगणीय रहेगा।
1: प्रभु प्रभु
2: प्रभु प्रभु प्रभु
1: प्रभु,
2: मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए करुणा निधान। मैंने शेखर की भक्ति में बाधा डाली, इसे आपसे दूर रखना चाहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए।
1: क्षमा कर दीजिए प्रभु, इसे क्षमा कर दीजिए प्रभु, हे वीरराज इसे क्षमा कर दीजिए।
0: तुमने शेखर की भक्ति को दृढ़ किया है गोपा। तुम्हारे पुत्र शेखर की आठवीं पीढ़ी में नंद नाम का एक प्रसिद्ध गोप होगा, जिसे विष्णु अवतार भगवान श्री कृष्ण के पालक पिता कहलाने का गौरव प्राप्त होगा।
3: भगवान भोलेनाथ की जय! भगवान भोलेनाथ की जय!
0: बालक श्रीकर की भक्ति और कृति को अमर करने के लिए मैं उज्जैन के इस शिवलिंग में सदा सदा के लिए विराजमान रहूंगा। इस महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर शव भस्म चढ़ाकर पूजा करने वाले की हर मनोकामना पूर्ण होगी।

0: 나 다리 단념
1: ॐ नमः शिवाय
2: भोलेनाथ जय हो महाकाल भगवान भोलेनाथ की जय।
3: महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना की परंपरा प्राचीन काल से अब तक अखंडित रूप से चली आ रही है। महाकालेश्वर के कारण ही उज्जयिनी नगरी पावन शिव तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। भारत की समस्त पवित्र नदियों के एकत्रित जल से महाकालेश्वर का अभिषेक किया जाता है। इस पावन जल का उपयोग महाकालेश्वर के अभिषेक के अतिरिक्त कहीं नहीं किया जाता। महाकालेश्वर की पूजा अर्चना ब्राह्म मुहूर्त से लेकर मध्य रात्रि तक निरंतर होती रहती है। प्रातः काल से पूर्व महाकालेश्वर की पूजा चिता भस्म से विशेष विधि से की जाती है। उस समय ज्योतिर्लिंग को पारंपरिक रीति से सुसज्जित किया जाता है। दूर दूर से भक्तजन महाकालेश्वर के दर्शन तथा पूजा अर्चना के लिए यहां आते हैं और शिव कृपा से अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। उज्जयिनी नगरी में शिप्रा नदी के पावन तट पर स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का यह मंदिर शिव आराधना की गूंज से निरंतर गुंजायमान रहता है।
4: यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सना

0: जय शिव शंकर।
1: महाबली दैत्यराज महाराज बलि की जय हो।
2: प्रभु, अपनी सभा में मुझे देखकर आप आश्चर्यचकित क्यों हुए महाराज? मैं दैत्य हूं, भला अपने धर्म को कैसे भूल सकता हूं? मैं कहीं भी रहूंगा सदैव असुर कुल के हित की ही सोचूंगा।
3: तुम दैत्य कुल गौरव हो रहा हो, हमें सदैव तुम पर गर्व रहेगा, किंतु तुम्हारी यह दशा देखकर हम स्वयं दुखी हैं। यदि हमने कैलाशपति का प्रस्ताव अस्वीकार कर समुद्र मंथन न किया होता तो आज तुम्हारा शरीर दो भागों में विभाजित न होता।
2: शिव शंकर तो भोलेनाथ है महाराज, उन्होंने दैत्यों के हित के लिए ही समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा था। यदि उन्हें ज्ञात होता कि विश्वासघाती विष्णु दैत्यों के साथ छल करेगा तो वे समुद्र मंथन के लिए दैत्यों को कभी ना प्रेरित करते।
4: विष्णु ने हमसे छल करने के लिए स्त्री रूप धारण किया।
0: छल करके उस कपटी ने देवताओं को अमृत, दैत्यों को वार निकलाई।
5: सेनापति राहु ने उसके कपट का रहस्य जान लिया तो उसने इनका मस्तक काट दिया।
6: विष्णु हमारा शत्रु है।
3: देवताओं के हित के लिए विष्णु के मन में सदा दैत्यों के प्रति शत्रुता की भावना रही है।
2: क्षमा करें महाराज, मैं तो केवल ये जानने आया हूं कि मेरी ये दशा देखकर क्या दैत्य अब भी अपने आप को पराक्रमी होने का गर्व करते हैं?
0: दैत्यों का पराक्रम पश्चाताप बनकर रह गया है राहु।
2: प्रणाम गुरुदेव।
0: आयुष्मान भव, तुम्हें देखते ही मन उस कपटी विष्णु के प्रति घृणा से भर गया राहु। असुरराज, अब तो आपको देवताओं के आराध्य विष्णु की दुष्टता और धूर्तता पर विश्वास अवश्य हो जाना चाहिए। मैंने आपको कितनी बार चेतावनी दी है कि देवताओं का हर कार्य दैत्यों के विरुद्ध एक षड्यंत्र ही होता है।
4: देवता हमारे शत्रु हैं, हम उन्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे गुरुदेव।
5: पराक्रमी व्यर्थ प्रलाप नहीं किया करते सेनानायक। दैत्य अपनी शूरवीरता और स्वाभिमान भूल चुके हैं। यदि दैत्यों में तनिक भी स्वाभिमान होता तो आज देवता निश्चिंत होकर स्वर्ग का सुख न भोग रहे होते।
3: स्पष्ट कहो राहु, तुम्हारा संकेत किस ओर है?
0: राहु का संकेत जिस कार्य की ओर है असुरराज, वो कार्य समुद्र मंथन के पश्चात ही हो जाना चाहिए था। देवताओं पर आक्रमण
3: अर्थात युद्ध।
5: हां दैत्यराज, मैं और मेरा धड़ केतु दोनों प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहे हैं। मुझ में युद्ध करने की क्षमता नहीं रही। मैं पराक्रमी दैत्यों का आवाहन करने आया हूं। स्वर्ग पर आक्रमण कीजिए महाराज, कायर देवता विलासिता में लिप्त हैं। विजय हमारी होगी।
0: राहु ठीक कह रहा है असुरराज, देवताओं का पक्षधर विष्णु कर्तव्य पालन का ढोंग करके आसुरी शक्तियों को सदा सदा के लिए समाप्त कर देना चाहता है, और यही कारण था कि समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत छल करके उसने केवल देवताओं को पिलाया। राहु ने दैत्यों के लिए बलिदान दिया है। अपने आप को शूरवीर कहने वाले दैत्य मूक दर्शक की बात खड़े देखते रहे। पराक्रमी दैत्यों की गणना कायरों में की जाने लगी।
4: विष्णु द्वारा किए गए छल का प्रतिशोध हम स्वर्ग पर आक्रमण करके लेंगे। दैत्यराज, हमें स्वर्ग पर आक्रमण करने की आज्ञा दीजिए।
3: यदि आप सबकी यही इच्छा है तो हम स्वर्ग पर आक्रमण करने का विचार अवश्य करेंगे।
0: विचार कायर किया करते हैं असुरराज, वीर समय की प्रतीक्षा नहीं किया करते। मैं साक्षात देख रहा हूं विजय आपके चरणों में खड़ी है। मेरा आशीर्वाद दैत्यों के साथ है, स्वर्ग पर आपकी विजय हो।
3: आपकी आज्ञा शिरोधार्य है गुरुदेव। दैत्य सेना नायक, सैनिकों को स्वर्ग पर आक्रमण करने का आदेश दीजिए।
4: जो आज्ञा मेरे पास।
0: दैत्यराज महाराज बलि की जय। शिव शंकर।
7: देवराज, देवराज, देवराज, सावधान देवराज, सावधान। देवराज स्वर्ग पर आक्रमण हो चुका है।
8: स्वर्ग पर आक्रमण? किसने किया यह आक्रमण?
9: दैत्यराज बलि ने देवराज।
10: असुर सेना के साथ वे स्वर्ग की ओर बढ़े आ रहे हैं देवराज।
8: दैत्यों द्वारा स्वर्ग पर अकस्मात आक्रमण किसी बहुत बड़े षड्यंत्र का संकेत है।
11: इसका परिणाम क्या होगा स्वामी?
8: आप निश्चिंत रहें देवी, दैत्यों के दुर्व्यवहार से भगवान भोलेनाथ अवश्य अप्रसन्न होंगे। उन्होंने ही दैत्यों और देवताओं के संघर्ष को समाप्त करने का प्रयास किया। हमारे पास पहले से भी अधिक शक्ति और सिद्धियां हैं, दैत्यों के इस आक्रमण को विफल कर देंगे। चलो शूरवीर देवताओं, इन आक्रमणकारी दैत्यों को हम स्वर्ग से भगा देंगे। चलो
12: देवराज इंद्र की जय।

0: रक्षा कीजिए देव गुरु बृहस्पति, रक्षा कीजिए हमारी देव गुरु। देव गुरु, देव गुरु अनर्थ हो गया। असुर राज बलि ने देवताओं को पराजित कर दिया है। देवताओं की कोई शक्ति कार्य नहीं कर रही है। हमारे सारे प्रयास व्यर्थ हो चुके हैं।
1: अब आप ही बताइए देवगुरु, बलि को स्वर्ग से निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
2: अब बलि को स्वर्ग से निकालना कठिन है इंद्रदेव, कठिन है।
0: तो क्या स्वर्ग का साम्राज्य अब असुरों के अधीन रहेगा?
2: मैंने यह तो नहीं कहा देवराज, परंतु यह निश्चित है, युद्ध के द्वारा बलि को स्वर्ग से अपदस्थ करना असंभव है।
0: तो आप ही बताइए अब हम क्या करें?
2: देवताओं के शुभ चिंतक परम पिता ब्रह्मदेव ने वही हमें बलि को पराजित करने का उपाय बता सकते हैं। हमें उन्हीं के शरण में जाना होगा।
0: तो चलिए देवगुरु, आप ही हमारा नेतृत्व कीजिए। यदि अधिक समय तक स्वर्ग पर बलि का अधिकार रहा तो अनर्थ हो जाएगा।
2: चलिए देवराज,
0: चलिए।
3: देवराज इंद्र, असुरराज बलि ने यह सिद्ध कर दिया है कि असुर अब देवताओं से अधिक बलवान है। बलि का स्वर्ग सिंहासन पर अधिकार असुरों की अतुल शक्ति का ही परिणाम है।
2: हाँ, आप सत्य कह रहे हैं ब्रह्मदेव। यही कारण है कि बलि से युद्ध में देवताओं की पराजय हुई तथा देवराज इंद्र असुर राज बलि को स्वर्ग सिंहासन पर बैठने से रोक न सके।
3: देवगुरु, ये देवताओं की असावधानी का परिणाम है।
0: ब्रह्मदेव, हमने तो असुरों के प्रति प्रतिशोध की कल्पना तक नहीं की। भगवान शिव के आदेशानुसार

0: देवताओं की असावधानी का परिणाम है।
1: ब्रह्मदेव, हमने तो असुरों के प्रति प्रतिशोध की कल्पना तक नहीं की। भगवान शिव के आदेशानुसार अब आप ही बताइए, हम क्या करें, कहां जाएं?
2: आप तो सृष्टि के रचनाकार हैं, आप ही बताइए। यदि स्वर्ग पर दैत्यों का अधिकार बना रहा तो सृष्टि के संतुलन का क्या होगा? क्या तीनों लोकों में आसुरी शक्ति का प्रभाव बढ़ नहीं जाएगा?
3: परमपिता, हम जानते हैं देवताओं के सहायक शुभचिंतक ब्रह्मा विष्णु तथा शिवजी हैं।
4: परमपिता, त्रिदेव ही हमारे आराध्य हैं, इसीलिए तो सबसे पहले हम आपकी शरण में आए।
0: ये तो निश्चित है देवराज, असुर राज बलि को अब स्वर्ग के सिंहासन से हटाना सरल नहीं है।
2: इस समस्या का समाधान आप ही कर सकते हैं ब्रह्मदेव।
0: देवगुरु, सबके कल्याणकारी भगवान शिव देवों और दैत्यों दोनों के आराध्य हैं, निर्णायक हैं। संकट की इस घड़ी में वे ही कोई मार्ग दिखा सकते हैं। आप किस सोच में पड़ गए देवराज?
1: परमपिता, आपने जो कहा वो सत्य है, परंतु
0: परंतु परंतु क्या?
5: असुर राज बलि शिव का परम भक्त है परमपिता।
2: दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने सदैव शिव भक्ति और कृपा से बड़े बड़े कार्य सिद्ध किए हैं। हमारे लिए तो आप ही
0: देव गुरु। आप तो परम ज्ञानी हैं, भगवान शिव के समान निष्पक्ष, सबके कल्याण की कामना करने वाला और कोई नहीं है। जो कोई भी भगवान शिव की शरण में जाता है, भगवान भोलेनाथ उसकी रक्षा

आज मंगलवार बुद्धि का दाता विघ्न विनाशक प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी को आराधना करने विशेष दिन आज की आराधना समर्पित गणपति गणाधिपति श्री गणेश जी जिसको स्मरण मात्रले पनि